0: हे गुण नाम सुनने को ओंकार सुग्र प्रसाद उतार का सेत सत्ता पश्चात स्वीकार प्रकृति इच्छा में सब लोग इच्छा में सर्व काल जी इच्छा में सब लोग जी सदा इच्छा हमने बंधन में ही पिजल तल बहां जते प्रसो कुड़ारे दा जगमग तेज प्रेम प्रताप अमृत में जय जपत जाप सातो आकाश सातो पताल पितृ अदृष्ट जे कर्म जार उस तत्व संपूर्ण
1: श्रंग महला पहला पे पांडे साजन आपे पूर्ण गए एक नित समय एक चल रहे चढ़े कने हाली पैसन एक ऊपर खड़े तेरा सारे नानक जिनको नजर करे महला दूजा
0: आपे सज करे आ जा गिर के किस जंत पाए के देखे थप था किस

हेने माने जे मानस सतगुरु नितला दे ताणी उठिया दियो उतनी आश्रय दे आश्रय गुरु गरीब निवा जी आप जी दा जरूर कीर्तन कर दिया होया सबद बेटा जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिना जिना मैं पयो लो सबद बेटा जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी सबना दिल के लाउनी चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वता।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच परंगन संग अलाप हे आठ नंदन प्रथम राग पहरो वै करही पंच रागनी।

साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आप जी भावना स्थान सतखंड दरबार दी भरदे हो आप जी कृपा बाणी का सत्कार करते हो बेअंत गुरमुखा प्यारियां वालों शब्द भेद माया हाजिर हुई है सच्चे पातशाह नाम नाम सिखे दान की बख्शिश करनी गुरु सिखी जान बख्श नाम दे रोग का समूह संतान ने अमनो कामना पूर्ण करने नाम वाणी नाल प्यार उठना दरिद्र प्रवान करनी यात्रा सफल सिखो शब्द यारी जन्म मरण की टे

त्व प्रसाद कबित खूकमल हरि गज गद हा विभूत दारी गिद्वा मसान बास करियो ही करत है। घुगमट बासी लगे डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधई मरत है। बिंद के सदैया ताए ही जिकी बडैया दे बंदरा सदीव वाय नंगे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है। भूत बन चारी छित छौना सब दूधाधारी पौन के आहारि सो भुजंग जानियत है। तृण के भजैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया भृग भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंछ की बटैया देत बगुला बिडाल भृग ध्यान ठानियत है। जेते बड ज्ञानी तेनो जानी पर बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे हूजरी गजैया कहे नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है। फल के भचैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदिश फिरैया ते तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भसैया सोचा कोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धीन चारी दिखी के स नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस गो बथैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे बूझत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगतकाल दीन दयाल बैरीसाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जो कि जटा थारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पाव वेद वेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करो ही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्यात ब्रह्म से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित असुनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल वस भय है। वीर पिकांबर कित गाने न परत एत भूम ही तह के फेर भूम ही मिलय है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई गोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को तलत है। मान से महीम ओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट फेस पोसती अनेक दानी वावत है। शीस को कहा भय मल्ल जप काढ़त अनेक दंड सो तो न दंडोत अस टांग अथ तीस।

करत शोर सदा घन घोर घन करी करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक बाहूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हु जलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगी अवरागी बने का बहु संन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पवन हरि कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बरी कहूँ दंडधारी हो के लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर सीतकार कुंजर उगत हा अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग डार दार दार।

सभी एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भछ केते अच वछ हो सब पछ उड़ जाहेंगे। केते नभ बीज अच पछ को करेंगे भज के तक व्रता चहे।

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज रेन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कूकत फिरत किते रोवत मरत किते जल में डुबत किते आग में जरत है किते गंगवासी किते मदीना मकानी वासी के तक उदासी के ब्रह्मा।

मंग न भर मंग न जन मंग न जातंग न मित्रंग न सतरंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न धामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सतरंग न भामंग लेखंग फेखंग जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्ध

दंगा देखंगा फेखंगा जोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छयाद अद्वय अविनाशी न जातंग न बातंग न रूपंग न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट गोटे उपाय सारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय अविनाशी परे अंग परापरम पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूप अखंड प्रतापाद अक्षय विभूत न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं स नेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न विद्रे स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे नरायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग फेखं न सत्रंग न मित्रंग न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नीय छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सोगं अभय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग प्रापालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवं सदा सिद्ध

मुक्तं गच्छय अद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साखं परे अं पवित्रं पुनीतं गताखं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साजे कहूं सिद्ध

कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व विघ्नहर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्नया कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश वाक्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ विंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ वीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राजसाजं धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षयाद अद्वै विधाता न त्रस्तं न ग्रस्तं।

अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख। जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध। जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगज जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अखय भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय तोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत गय कल्प जोग साधत तुरंत। तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार। कई उर्ध बाह देशन भ्रमांत कई उर्ध मध्य पावक झुलांत कई सिमृत शासरत उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब। कई अग्न होत्र कई बौन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नहीं तदप देव होवत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई कर्त भांत।

तपतापत सर्व जलेर थलंथन उचरत इंद्र कुमेर बलं अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड अभूत छेद छेंगन काल अपाल दयाल स्वंग जेठ ठट्यंग।

अग्न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितं जेह रचयं छत्री छत्र छिदं जेह राग न रेख न रोग भणं जेह द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंड हते ब्रह्मंड रचियो तस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जाच्छ गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपाल रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उद भुजंग किए देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड कतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जेह तात न मात न भ्रात सुतंग जेह रोग न सोग न भोग भुयंग जेह जंप है किन्नर जच्छ जुवंग नर नार न पुंसक जाह किए गण किन्नर जच्छ भुजंग दिए गज बाजर थातिक पांद गणंग भव भूत भविख भवान तुवंग जेह अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत अभूत अछूत मतंगन गाद व्याद अनाद गतंगन खेद अवेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जेह राग न रंग न रेख रुखं जे सोग न भोग न जोग जुगं भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जेह बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मूति लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जेह पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जेह वेद पुराण कतेब जपै सुत सिंध अधो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान पर जेह फोकट धर्म सभै तज है एक चित्त कृपा निध को जप हे देव या भव सागर को तरह भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचारत सार सुती जो वारस के चस के रस है त्यो भूल न का

अभिव भेवनाद है समस्त सिद्ध वृद्ध दास अदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है छिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानी है। नराग रंग रूप है नरोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म वेख है। न तात्माद जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेग शेख भेग है सदीव विश्ववरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्ववरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अद्वेख है अभेग है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर मैं विशेख आन मानिए। न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण कुरान नेत नेत कह बतावई। न करम में न धर्म में न भरम मैं बताइए अगंज आदि देव है कहो सु कैसे पाइये। जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है। नहान है नबान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए। न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है। न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह है। न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है। न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है। न नेह है न गेह है न देह को बनाव है न छल है न छिद्र है न छल को मिला।

पर यह है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है गरीब है कुरान है। अकाल है अबाल है ख्याल है खंड है न रोग है न शोक है न भेद है न फंड है। न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है। न सीध है न सोच है न ग्राम है न काम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है। न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न चल है न चित्र है न चित्र के विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभ्रम है अभूत है। अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत वेग है बलिय रूप राग रंग है। न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिन्ह वर्ण है। बेअंत है अनंत तेज जानिया भूम अविज है सदा चिज तेज मानिया। न आध है न प्याद है अगाध रूप लेखिया दोख है अदाघ है अच्छे प्रताप पेखिया। न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है। न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ मोकार है न आध है न गाध है न व्याध को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि ग्रंथ सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सत्र सने जानिए। सदीव सर्व लोग के कृपाल ख्याल मैं रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोध है।

दुष्ट गंजन सत भंजन परम पुरख परमाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत मै जिह गाथ भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाद श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मछ कछ अपार भूमा का जले थले महमानिये जिह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल कुबिंद मित्र पालक सत्र गालक दीन दयाल मुकंद अघाव डंडन दुष्ट खंडन काल हो के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीन सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्वभरता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूम का जले थले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए समचार आद देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेवना पावे शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भेमुख चार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल युग चक्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यास मोन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार

आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार। दोहरा कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुगड़ा को मूढ़ता कहा तरक अवतरक। दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप कह धर्म, कवन जोग को भोग है कवन कर्म अपकर्म। दोहरा कहो सुसम का सो कहे दम को कहा कहंत, को सूरा दाता कवन कहो तांत को मंत। दोहरा कहाँ रंग राजा कवन हरक सोग है कवन, को रोकी रागी कवन कहो तात मोह तवन। दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार, कवन रिष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार।

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृते जशरासुर मारण पतित उदारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे लख मते जय जय हो सेवा खासुर मारदन राम कबरदन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते चंडासुर चंडन वुंड बिहंडन धूम्र

भूतान भय अनंत तौ कहो जथा मत त्रैण तंत। कर्ता करीम कादर कृपाल अद्व भूतान भय दयाल दादा दुरंत दुख दोख रहत जिह नेत नेत सब वेद कहत। कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जागो प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै लखाए। अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अना सब रूप सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छा स्वरूप। करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद वरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेद कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र जैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव।

और की बात कहा कह दो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तमे सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिन्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहों को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पचहारे। भेद न पा सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध बेगत वेख जप्यो तिन्हि कुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरे कर फेस तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुकारे। दीन दयाल काल भजे बिनांत को।

रुहेले मांग देश के मंगेले वीर भंग सी बुंदेले पाप बुंज को मलत है। गोखा गो नगावे चीन मचीन के शीस ने आवे ते बत दे आए दुख देह के दलत है। जिने दोहे जायो तिने पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल संफलत है। देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अवेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे बहुचात दाहे चिट्टी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते सस रास केते सूरज प्रकाश केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जच कहियत है। करते है विचार पैना पूर्ण गो पावे बार ताहि ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी कह के मानी है। जंत्र हूँ न जात जा के बाब हूँ न मायदा की पूर्ण प्रभा की सोछटा के अनमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूँ को सर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सत्रण के साल है के मित्रण को पोकत है के वृद्धता की वासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ का घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के श्री है नर है। विश्व को भरण है के अपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार वार हूँ को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमाल का वह बसी हल विधा वह पूर्व बिना पार पावे असत्य अनाश है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवना तद्वय अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीर है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसे छीरावत छाछ कैसे छतरा नेर छपाकर कैसे छप कालिंद्री के कोल के। हंस निश सिंहारू मही राशि हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सात सिंध रूल के। पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ तीरथ तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हलबानेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधर बकान सी बिरंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासीज के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गाइयत है। बखरी कंधारी गोर गखरी गर्द जचारी पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप ओ कमाओ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र तेता बिना।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक।

सिमट पयो शंकर इकट्ठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पात सकल मलेश करो रणकात जे अस तुज तौ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित वै।

चतर चक्र वर्ते चतार चक्र भुगते स्वयं शुभंग सर्वदा सुजुगते दुकालं करना से दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते देख ते को फतेह नुसरत बेदरंग आप तज अज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्रीकार पुरज सहाय दरबार में तुर दरबारा सच खान वसे निरंकारा लक्ष्मी खड़े तुम्हारे दरबारा सर्व